0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehapurna aamantran. Shanivar 1 August ko subah 10 baje Shivji Rudrabhishek aur sham 5 baje Virat Deep Yagya. Ravivar 2 August ko subah 10 baje 251 kundiya Gayatri Mahayagya Shanti Kunj. Haridwar ke pujya santo dwara Vedic vidhi se anushthan aur Dr. Chinmay Pandya ji ki pavan upasthiti. Adhik jankari ke liye 732-357-8200. जय गुरुदेव।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

कनिका कपूर एंड हर बेस्ट डारा डस से ऑन लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका वार्निंग योर डांस मूव्स मे सडनली अनलॉक प्रीमियम फीचर्स साइड इफेक्ट्स इंक्लूड जीरो शेम एंड अनलिमिटेड स्वैग गाने का नाम है डर्टी डांसर

मिर्ची जा रही है. सो बेबी लेट मी लव यू डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑन योर ओन थिंग एंड ग्रीन फ्लैग्स आर अट्रैक्टिव आई एग्री बट टुनाइट वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
8: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

बैक इन द मिक्स क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदेका के साथ एंड आईज डोंट लाई बट योर फ्रेंड्स We are leaving in 5 minutes. They are definitely lying, okay? Gare ka naam hai Akia Gulab. Enjoy.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

0: वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ। मेन कैरेक्टर सिंड्रोम अलाउड टुनाइट बिकॉज़ वी आर ऑल बॉर्न टू शाइन।
1: ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਚੇਲਾ।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go!

वेलकम बैक वंस अगेन, क्लब मिर्ची जारी है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर आपके डोले शोले अच्छे हैं तो अगला गाना आपके लिए है। वेदर योर डांस स्टाइल इन बॉलीवुड फ्री स्टाइल और आई एम जस्ट विंगिंग इट टुनाइट, एवरीथिंग इज लीगल एक्सेप्ट बैड वाइब्स। गाने का नाम है डोला रे डोला। देवदास मत बनो यार।

बैक इन द मिक्स क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंडेका के साथ एंड आईज डोंट लाई बट योर फ्रेंड्स वी आर लीविंग इन 5 मिनट्स दे आर डेफिनेटली लाइंग ओके.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
4: spiders have free life cycle
3: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज के पहली फिल्म में नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeetu Raj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeetu Raj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeetu Raj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeetu Raj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeetu Raj विद फोर मिर्चीज
1: साथ Jeetu Raj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

वेलकम बैक है जी। एक्स को आर्काइव करो, मेमोरीज को म्यूट करो और बस बेस को फुल वॉल्यूम पे छोड़ो। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका, हियर्स योर ब्रेकअप पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट,
4: लेडीज एंड जेंटलमैन।

बैक इनसाइड क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन टेका जहां पे है जीरो कंपटीशन बिकॉज़ योर वाइब ऑलरेडी वन द मुकाबला डार्लिंग लेट्स गो.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा ओनली ऑन 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम एचडी2 इट्स हॉट

रेडियो मैक क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. वेदर यू क्रूजिंग विद योर गैंग और डांसिंग इन योर बेडरूम मिरर टुनाइट वी आर ऑल हैप्पी बंजारास चेजिंग गुड वाइब्स ओनली.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

कनिका कपूर एंड हर बेस्ट डरा से ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. वार्निंग, योर डांस मूव्स मे सडनली अनलॉक प्रीमियम फीचर्स. साइड इफेक्ट्स इंक्लूड जीरो शेम एंड अनलिमिटेड स्वैग. गाने का नाम है डर्टी डांसर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
4: spiders have three life cycles
3: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeetu Raj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeetu Raj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeetu Raj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeetu Raj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeetu Raj विद फोर मिर्चीज
1: साथ Jeetu Raj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

Welcome back once again. Club Mirchi जारी है with DJ Richard and Mirchi Oyontika. और अगर आपके डोले शोले अच्छे हैं तो अगला गाना आपके लिए है. Whether your dance style in Bollywood, freestyle or I'm just winging it tonight, everything is legal except bad vibes. गाने का नाम है डोला रे डोला. देवदास मत बनो यार.

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है. एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है. इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते. नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है. और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है. तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया.
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बचेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं. जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप, मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है. तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है. मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे. मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूं? तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं.
0: यार बस यही फर्क है, और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं. क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया. फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है. तो दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के. इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन.
2: नंबर 4.

बैक इन द मिक्स क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदेका के साथ एंड आईज डोंट लाई बट योर फ्रेंड्स We are leaving in 5 minutes. They are definitely lying, okay? Gare ka naam hai Akia Gulab. Enjoy!

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

वेलकम बैक है जी। एक्स को आर्काइव करो, मेमोरीज को म्यूट करो और बस बेस को फुल वॉल्यूम पे छोड़ो। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका, हियर्स द ब्रेकअप पार्टी।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: not Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahi bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर धार्मिक स्थल ऊंची जगहों पर ही क्यों बने होते हैं? आइए इसके पीछे छुपे अर्थ को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब इंसान सही रास्ते पे चलता है या जब वो असली अल्टीमेट ट्रूथ के खोज में निकलता है तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में और शायद आज भी मंदिरें जो हैं, मस्जिद जो हैं, दरगाह जो है, चर्चेज, वो एकदम बाहर पहाड़ों पे, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पे बनाए जाते हैं। तो बहुत मुश्किलों के बाद ही इंसान भगवान तक पहुँच पाता है, ये एक तरह से शायद सिग्निफाई करता है इसको। तो जब मुश्किलों का इतना सामना करना पड़ता है उसके बाद ही अल्टीमेट ट्रूथ मिलता है, भगवान ने इतना डिफिकल्ट क्यों बना रखा है इसको?
4: अल्टीमेट ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली इतनी डिफिकल्टी नहीं है। वो तो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मंदिर इसलिए बने क्योंकि वो ऊंची स्थिति का यादगार है। जो भी देवी देवताएं या जो भी हाँ, बिकॉज वो बहुत हाई हैं, तो हमने उनको पेडेस्टल पर बनाने के लिए बहुत ऊंची जगह पर बिठाया। बाकी कोई उसमें आपको कष्ट सहन करके ही वो चीज मिलेगी जो कभी कभी दिखाया जाता है। सी एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे पेरेंट ही तो हैं। आप गॉड इज ट्रूथ कहें, जो गॉड है, जो परमात्मा है, तो पेरेंट से मुलाकात करने के लिए कोई इतना
3: कष्ट नहीं उठाना चाहिए।
4: इतना कष्ट उठाने की कोई बात ही नहीं है। कष्ट किसके अंदर है, अगर जो चैलेंज है वो है उसके ट्रूथ के पाथ पर चलने के, ट्रूथ तक पहुंचने के नहीं। उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होती। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट ट्रूथ इज, पर उस पाथ पर चलने के लिए आपको जैसे एक बाहर की युद्ध होती है, एक अंदर की युद्ध होती है। क्योंकि बहुत समय से आप जो उसका उल्टा है, आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, वो कंफर्टेबल है, उससे टेम्पररी बेनिफिट है, तो वो युद्ध, वो जो बैटल है, वो ज्यादा बहुत कश्मोकश जो है। हाँ। कि गुस्सा करें या ना करें, इच्छा रखें या ना रखें। हाँ। संतुष्ट हो या डिजायर्स हो, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो बैटल है, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बाहरी सहारे से पहले खुद के अंदर फेथ होना इतना जरूरी क्यों होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बीमारी में सिस्टर क्या होता है कि हमारा शरीर है तो हम समझते हैं, हम देख रहे हैं कि भैया प्रभाव है या नहीं, लेकिन जहाँ तक फेथ की बात होती है, क्योंकि हम फेथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादातर जो मिलने वाली चीज होती है ना, वो हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस है जो ओवर ए पीरियड टाइम हमको समझने में आता है। तो उस केस में क्या होता है, बाय द टाइम वी रियलाइज कि हम गलत पाथ पे निकल आए, शायद बहुत देरी हो जाती है या हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो उनके भरोसे निकले हैं, वो जहाँ ले जा रहे हैं हम जा रहे हैं, तो कैसे समझें।
4: नहीं, पता तो चलता है, समय लग सकता है। जैसे अभी आप डॉक्टर के पास भी तो फेथ से तो जाते हो
3: कि ठीक कर देंगे।
4: हाँ, कोई भी आप डॉक्टर के पास ऐसे थोड़ी ना जाते। आप कितने आपके गलत एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं, तभी तो आजकल कहते हैं सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, पर आप जाते तो उसी फेथ से है ना, कि हम उसके सामने जाके सरेंडर होते हैं कि वो हमें ठीक कर देंगे। लेकिन फिर जर्नी में कई बार आपको एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, ये तो गलत हो गया मेरे साथ। ऐसे ही आप किसी के ऊपर भी फेथ रखते हैं। आप कैसे फेथ रखते हैं, कम से कम 10, 20, 50 लोग आपको कहते हैं कि नहीं, हम जब इनके मत पर चले तो हमें बेनिफिट हुआ, हम इस हायर पावर से कनेक्ट हुए तो हमारे अंदर की बीमारी ठीक हुई। देखो, देयर इज नो अदर वे। आप किसी के पास भी कैसे जाते हैं, जब कई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें बेनिफिट हुआ, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। अल्टीमेटली आप अपने एक्सपीरियंस से ही डिसाइड कर सकते हैं।
3: सही बात है।
4: तो वो एक्सपीरियंस जो हमारी बीमारी अगर ठीक हो रही है, तो वो जो गाइड है वो हमारे लिए ठीक है।
3: तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि झुकना कमजोरी नहीं है और सही वक्त पर निकल जाना हार नहीं है, लेकिन असली समझदारी इसमें है कि हमको ये पता चले कि कहाँ झुकना और कहाँ निकलना है।
4: What I'm trying to say is, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है जो हम कह रहे हैं कि हम उस यात्रा पर निकल जाते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि ये हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं। उससे पहले भी जो एक जज करने का फैक्टर होता है, मन राइट रॉन्ग को जज करने का, परख शक्ति जिसको हम कहते हैं, एट अ वाइब्रेशनल लेवल ऑल्सो। कभी कभी अगर आपके मन के अंदर क्लटर नहीं है, तो आप सामने वाले के वाइब्रेशन से भी आपको पता चल जाता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। कितनी बार हम लोग भी कह देते हैं ना, नहीं ये तो हमें ढोंगी लगता है, ये तो हमें रियल नहीं लगता है, ऑथेंटिक नहीं लगता है। क्यों? वो बोल बहुत अच्छा रहे होते हैं, पर वो चीज उनके संकल्प में नहीं है, उनके एक्शंस में नहीं है, उनकी एनर्जी में नहीं है, तो आपको वो कन्विंसिंग नहीं लगता है।
3: सही बात।
4: लेकिन अगर वो उनके जीवन में भी उतरा हुआ होगा
3: तो फिर आप फील भी करेंगे।
4: आप फील करेंगे। उनके शब्दों के अंदर भी एक अलग प्रकार की अथॉरिटी होती है।
3: सही बात।
4: नम्रता भी होती है, लेकिन साथ साथ अथॉरिटी भी होती है, क्योंकि वो बोल कन्विक्शन से निकल आते हैं। तो पहली जजमेंट, पहली परख शक्ति जो है वो व्यक्ति की एनर्जी से करनी चाहिए, और फिर तो पाथ पर चल करके पता चल ही जाता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर जो इंसान आपको गाइड कर रहा हो वो ही गलत दिशा दिखाने लगे तो ऐसी सिचुएशन में सही फैसला कैसे ले, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे लोगों के संगत में आ जाते हैं जो शायद आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि शुरू में आपने जैसे कहा हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन ही होता है, विजडम नहीं होता। विजडम किसी का गाइड करने पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। अब जो आपको गाइड करने वाला हो, कई बार हमने देखा है बहुत सारे हेड्स ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स हैं या बहुत सारे बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं। तो आपको गाइड करने वाला ही अगर आपको गलत दिशा ले जाए, हमें कब समझ में आना चाहिए कि भैया अब इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, अब निकल लेना चाहिए?
4: देखो, जब दवाई खा रहे हैं तो बीमारी ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप किसी की भी गाइडेंस पर चल रहे हैं लेकिन बीमारी तो आप ही की है ना अंदर में, वो बीमारी चाहे विकारों की है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आप कुछ तो खत्म करने के लिए आए हैं, कोई तो बीमारी, क्योंकि ये बीमारी कोई बाहर फिजिकल बीमारी के तो बात नहीं चल रही है। इट कुड बी फियर, इट कुड बी वरी, इट कुड बी एंजाइटी। बीमारी ठीक हो रही है तो दवाई ठीक है, बीमारी ठीक नहीं हो रही तो वो दवाई देने वाला चाहे कोई डॉक्टर कितना भी फेमस हो या कितने भी उसने अवार्ड जीते हों, पर वो आपके लिए नहीं ठीक है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या सरेंडर करना ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बार हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था दैट सरेंडरिंग इज द हाईएस्ट वर्च्यू, और मैंने देखा है कि कोई भी शैली हो, कोई भी आप संगीत हो, रिश्ता हो, स्पोर्ट्स हो, वो कंप्लीट सरेंडर मांगता है। लेकिन कई बार इंसान को ये समझ में नहीं आता कि सरेंडर कहाँ करना और रिजिस्ट कहाँ करना है, क्योंकि हमें ये भी सिखाया जाता है कि हर चीज़ में सरेंडर करना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एडिक्शन है तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव चीज़ों में आप रिजिस्ट करो, पॉजिटिव चीज़ों में आप सरेंडर करो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रास्ते आते हैं जहां आपको ये समझ में ही नहीं आता कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपको गाइड करने वाले आपको ये सीख नहीं देते। तो ये कैसे समझा जाए कि कहां सरेंडर करना है और कहां रेजिस्ट करना है?
4: से पहले तो राइट और रॉन्ग की जो समझ है उसमें सरेंडर रेजिस्ट यूज नहीं होता, वो तो एक इंटेलेक्ट की क्लैरिटी है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। नाउ आफ्टर मूविंग ऑन द पाथ ऑफ राइट, अब आप कभी कभी तो जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं आप कंट्रोल करते हैं, व्हाट इज इन योर कंट्रोल। नाउ जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आउटकम है, आप वहां सरेंडर करते हैं।
3: जी बिल्कुल।
4: लोग कहां सरेंडर कर पाते हैं? जब आउटकम आता है तो ये ऐसे होना चाहिए था, ये मुझे मिलना चाहिए था, ये क्रेडिट इसको चला गया। तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं है वहां सरेंडर, हैविंग कंप्लीट फेथ कि इसके अंदर बेनिफिट है, और जो आपके कंट्रोल में है भले उसको कंट्रोल करें।
3: हाँ, तो इसमें एक ब्यूटीफुल जापानीज ट्रेडिशन है, टेक्निक बोल सकते हैं, उसको कहते हैं शूहारी, और इसके तीन स्टेप्स होते हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो शू होता है वो स्टेज जहाँ, या वो लेवल जहाँ पे आप अपने गुरु की हर बात माने। जैसे कराटे किट भी अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी वो बेसिकली वो एक शू का ही तरीका है कि भाई जो बोलें बिना क्वेश्चन किए आप उनकी बात माने, तो वो होता है शू। हाँ होता है जब आप नियमों को तोड़ना सीखते हैं और अपना तरीका जो है वो खोजते हैं। तो कई बार संगीत में भी होता है, हम सीखते सीखते अपनी एक सुर निकाल लेते हैं, अपना एक घराना बना लेते हैं, तो कई बार हम देखते हैं। और री जो होता है वो ये होता है कि आप गुरु से भी आगे निकल गए और आपने अपनी शैली रच ली। तो ये शूहारी ब्यूटीफुल जापानीज ट्रेडिशन है। तो पहले है सरेंडर, फिर है एक रूल को तोड़ना, और तीसरा ही अपना ही रास्ता निकाल लेना।
4: बट ये अपने आप होता है, इट इज नॉट समथिंग दैट यू डू कॉन्शियसली। आपको गाइडेंस भी लगती है,
3: बिल्कुल,
4: वो गाइडेंस ही आपको स्ट्रेंथ देती है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, और तो ही आपका कुछ एक जो फल आप कहें या जो छवि बन करके निकलती है। बट इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस दैट हैपेंस।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari.
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि ईगो को छोड़कर सच को अपनाना कैसे होता है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: यू नो, एक कमाल की किताब है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ये किसने लिखी है मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट इज बेस्ड ऑन अ पर्सन जो बिलियन डॉलर कंपनी बाद में खड़ा करता है, लेकिन वो बिलीव करता है कि सरेंडर का मतलब हार नहीं होता, और बहुत कमाल की ये किताब है। तो हर बार सरेंडरिंग टू द फ्लो इज नॉट नेसेसरली लूजिंग आउट टू ऑप्शंस।
4: सरेंडर इज द बिगेस्ट वर्च्यू। सरेंडर में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, सरेंडर वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। सरेंडर का मतलब है कि यू आर नाउ रेडी टू, जो हायर पावर या हायर प्लानिंग या डिवाइन प्लानिंग है, आप उस चीज को भी समझ करके अपनी डिजायर को सरेंडर कर रहे हैं, सो दैट यू कैन बोथ अलाइन, और जो एक्चुअली बेस्ट है वो होगा और आप उसके लिए तैयार है। नहीं तो सरेंडर के बीच में हमारी डिजायर आ जाती है, आई वॉन्टेड टू बी डन माई वे। माई वे इज ऑल्सो गुड, बट वॉट इज द डिवाइन प्लानिंग इज गोइंग टू बी द बेस्ट। तो सरेंडर तो बहुत जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर आप भी मिलेनियल जनरेशन से हैं, तो ये बात आपके नजरिए को बदल सकती है। आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, अद्वैत का जो सवाल है, मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो 80s 90s में जो बच्चे बड़े हुए ना, वो कभी कभी बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जनरेशन में ऐसा होता था, लेकिन आज के बच्चे बोलते हैं आपका जनरेशन है नहीं। और उनके लिए वो साधन नहीं रहे, क्योंकि जिंदगी बहुत बदल गई है। एक तो ज्वाइंट फैमिली नहीं रही, और दूसरी बात है कि बहुत सारा इंटरनेट आके, सोशल मीडिया आके, उन्होंने बहुत कुछ अलग कर दिया। तो कभी कभी वो जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई थिंक मिलेनियंस के लिए बहुत दिक्कत है, बिकॉज दे आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को भी सुनी और अपने बच्चों को भी सुन रहे हैं।
4: आई थिंक मिलेनियंस प्रॉब्ली, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया था, पर आज अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो वर्क नहीं करता है। आई थिंक उन्होंने भी जब कंट्रोल एक्सेप्ट किया था तो वो भी सफोकेट होते थे, बट कम्युनिटी सिस्टम बहुत था,
3: इसलिए वो बैलेंस आउट हो जाता था।
4: हाँ, क्योंकि क्वेश्चनिंग थी ना, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल कितनी बड़ी क्वेश्चनिंग थी। समझो आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कह भी दिया, शाम को 5-10 दोस्त इकट्ठे हुए, अपना फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाला, एंजॉय किया, खत्म हो गया।
3: वो हमारा सोशल मीडिया था,
4: वो हमारा सोशल मीडिया था। तो फ्रेंड्स की क्वेश्चनिंग थी, ग्रैंड पेरेंट्स की क्वेश्चनिंग थी, ज्वाइंट फैमिली की थी। अब क्या हो गया है, वो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं है। बच्चा अकेला अपना सोशल मीडिया के साथ बैठा हुआ है।
3: हम बहुत वीक हो गए हैं,
4: इमोशनली बहुत वीक हो गए।
3: वो इमोशन निकालने की कोई जगह नहीं है।
4: चलो कम से कम पहले, वैसे तो क्रिएट नहीं करना चाहिए, पर पहले कम से कम सप्रेस नहीं करते थे। दोस्त आपस में मिले, हंसे, खेला या किसी और चीज में इन्वॉल्व हो गए। एक्टिविटीज कितनी थी, कितना आप स्पोर्ट्स खेलते थे या आप कुछ ऐसा करते थे जो आप एंजॉय करते थे, जो आपके लिए एक मेडिटेशन जैसा ही हो जाता था, चाहे वो डांस है, गार्डनिंग है, कुकिंग है। तो वो बहुत चीजें थी जिसके कारण वो कंट्रोल का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं हुआ। आज हम वो चीज नहीं कर सकते। आज जब आप वो चीज करते हैं तो बच्चे तो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, कोई कोई तो सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं। पिछले दिनों में, ये रियल है, 6-8 महीने पहले की बात होगी, एक पेरेंट ने अपने बच्चे को केवल डांट दिया किसी बात के लिए। वो लेट आया था, वो बच्चा छत पर गया, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ इसी बात पे झगड़े जा रहे हैं, आपने क्यों बोला, आपको समय नहीं बोलना चाहिए था। अब हम कहेंगे इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ कभी ना कभी कह देते हैं, पर अब वो इतने इमोशनली वीक हो गए हैं कि वो एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं, तो इसलिए अब कंट्रोल काम नहीं करता। तो जब कंट्रोल काम नहीं करता तो फिर दूसरा तरीका क्या है, इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना, एक्सेप्ट करना। तो इधर वो अपने इमोशनल स्ट्रांग बनाए तो आपके तरीके कंट्रोल वाले काम करेंगे, अगर वो इमोशनली वीक हैं तो फिर हम वो तरीका यूज नहीं कर सकते भी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: It's 7:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
1: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
2: Shaadi shopping ka complete destination. Fashion queen.
1: Visit today. 1358 Oak Tree Road, Islin.
3: Apne ghar mein to har koi sher hota hai. लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, काजल ने एक सवाल लिख के भेजा है कि मैं 25 साल से पढ़ा रही हूँ, यानी कि टीचर है वो, और मेरे पिता की बीमारी के कारण मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब सास बिस्तर पर है, 1.5 साल हो गया है, अब फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि फिर से स्कूल ज्वाइन करूँ या नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बस मन बहुत अशांत है।
3: मन इसलिए अशांत है क्योंकि कई बार डिजायर होती है ना, गलत नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं गलत नहीं है, पढ़ानी अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है वो देखना पड़ता है। अगर इस समय आपको लगता है कि प्रायोरिटी अपने ओल्ड पेरेंट्स की केयर करना है
2: जी,
3: और फाइनेंशियल नीड भी नहीं है, तो वो करना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए। मन जो बार बार कहता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ समबडी हु इज ऑन द बेड इज नॉट इजी।
2: एब्सोल्युटली,
3: यू आर ऑल द टाइम गिविंग,
2: इट्स अ लॉट ऑफ वर्क।
3: मतलब फिजिकल वर्क भी है, लेकिन जो बीमार है वो चिड़चिड़ा भी होता है, कुछ ना कुछ बोल भी देता है। आपको फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है देने के लिए। ये कहना इजी है, बट टू बी अ केयर गिवर,
2: सही बात है,
3: केयर गिवर के लिए फिजिकली भी स्ट्रांग होना, फिर कंपैशनेट भी होना, लविंग भी होना, पेशेंट भी होना, वो हो नहीं पाते तो जो पेशेंट है उसके व्यवहार का, उसके डिस्टर्बेंस का टोल हो जाता है।
2: बिल्कुल,
3: अगर हम अपने को समझाएं और उस चीज को बहुत प्यार से करें, तो ये भी पक्की बात है कि जब आप किसी दर्द वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं तो उससे जो दुआएं मिलती हैं वो भी दुआएं आप कहीं और नहीं कमा सकते हैं। तो अगर ये आपकी प्रायोरिटी है, आप इसको एक्सेप्ट करें, अपने मन को समझाएं, बहुत खुशी से बहुत प्यार से उनकी सेवा करें और इस फेस को भी एंजॉय करें। ये आपको समटाइम्स वी लर्न द मोस्ट इन दीज काइंड ऑफ फेजेस।
2: एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। और काजल जी, मैं आपको एक राय दे सकता हूँ कि खलील जिब्रान, जिसको खलील जिब्रान भी कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी प्रॉफिट, और प्रॉफिट में बहुत कमाल की चीज़ कहते हैं दैट वर्क इज लव मेड इनविजिबल, और इस पे बहुत कमाल का चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही शायद वर्क है, वो जरूर पढ़िएगा तो बहुत सारी आपकी जो दुविधाएं हैं वो शायद निकल जाएंगी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
7: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, कुशल का एक सवाल आया है। वो लिखते हैं कि मुझे बहुत गिल्ट होता है, क्या करूं?
3: गिल्ट वैसे देखो बहुत अच्छा नहीं होता। एक सेकंड की रियलाइजेशन ठीक है। समझो आपने कोई किसी से आपका कोई गलत हो गया, कोई गलती हो गई, व्यवहार में गलती हो गई, तो वो एक सेकंड की रियलाइजेशन तो जरूरी है कि आप दोबारा उस चीज को ना करें।
2: सही बात।
3: लेकिन अगर आप गिल्ट में चले जाते हैं, जो कहीं रिलीजन में उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, रिपेंट करना, गिल्ट करना, पर उसकी सोच कैसे होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने, एक माँ ने अपने बच्चे पर ही हाथ उठा दिया, फिर उसको बहुत गिल्ट हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर वो है तो नेगेटिव थिंकिंग ना, तो उसको डिप्लीट करेगी। रियलाइजेशन होना जरूरी था कि मेरा जो ये एक्ट है वो गलत है और मुझे दोबारा नहीं करना, लेकिन कॉन्स्टेंटली उस चीज में जाना वो आपकी सोल पावर को डिप्लीट करता है। तो अपने को उससे बाहर निकालें, हो गया, बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप, आगे से ध्यान देंगे।
2: इसमें माया एंजेलो, जो अमेरिकन पोएट और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कमाल की एक बात कही थी और मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि डू द बेस्ट अंटिल यू नो बेटर, एंड व्हेन यू नो बेटर डू बेटर।
3: When you know better, you do better. Ignorance is not a crime. जो उसकी complete है, आपको पता ही नहीं था। लेकिन इनका जो कई बार guilt होता है ना, हमें पता होता है, हम अवेयर नहीं होते, उस समय हम माइंडफुल नहीं होते।
2: लेकिन कई बार क्या, वो गिल्ट चलता रहता है, तो उसको हटाने के लिए क्या, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करें?
3: जैसे अगर किसी को गिल्ट है, आपके परिवार में किसी को गिल्ट, किसी बात का ही गिल्ट है, तो आप उनको क्या क्या कहते हैं?
2: कोई बात नहीं, हो गया, रहने दो, अब आगे से नहीं करना।
3: इतना ही सिंपल होता है, यही अपने को कहना होता है,
2: बस
3: इतना ही। बट ये रिपीट मोड पर कहना होता है। जैसे आप उनको कहेंगे, पर ये जो सेल्फ काउंसलिंग या सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल चीज है।
2: सही बात।
3: बार बार गिल्ट आती है, फिर आप अपने को कहते हैं मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, हो गया, कम से कम मैंने रियलाइज तो किया, मैं आगे से ध्यान दूंगा, आई विल ट्राई टू बिकम बेटर, फिर वो चीज आए, फिर आप रिपीट करते जाते हैं टिल यू कम आउट ऑफ इट।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi. It's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक्सेप्टेंस की असली पावर क्या होती है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हम पॉजिटिविटी की बहुत बात करते हैं, तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें कमाल की एक कहानी लिखी हुई थी। तो वियतनाम वॉर में एक प्रिजनर थे जिनका नाम था एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल। तो वो 7 साल से ज़्यादा उनकी कैद हुई थी वहाँ पे, और 20 बार से ज़्यादा उन्हें टॉर्चर किया गया था, और उन पे किताब है। और जिम कॉलिंस जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया था और जो उनसे सवाल जो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि जो टूट गए वो कौन थे। तो स्टॉकडेल ने ना बहुत ही चौंका देने वाला जवाब दिया, उन्होंने बोला द ऑप्टिमिस्ट्स। और ये सुन के और ये पढ़ के मैं थोड़ा हैरान रह गया कि ऑप्टिमिस्ट तो यू सपोज टू बी टेकिंग, मतलब आप आगे निकलने का रास्ता देखते हैं। कहते हैं कि जो सिर्फ उम्मीद पाले बैठे थे ना, वो टूट गए, क्योंकि वो अपने आप को बोल रहे थे बस क्रिसमस तक। तो कई क्रिसमस आए और चले गए, लेकिन क्योंकि हमारे हालात नहीं बदले, वो सबसे पहले टूटे और वो सबसे पहले मायूस हो गए, या दे पास्ड अवे और दे जस्ट कुड नॉट बेयर इट। और जो बचे उन्होंने आज में रहना सीखा, बोले आज का दिन इज द ओनली हकीकत, इसको पार कर लेते हैं फिर देखी जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि विश्वास करना दैट ऑप्टिमिज्म इज गोइंग टू गेट मी आउट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। और हमें हमेशा सिखाया जाता है कि भैया उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं बैठती।
4: नहीं, ऑप्टिमिज्म काम तो करता है, लेकिन एक लेवल तक। देखो, होप भी उनको कहीं तक तो लेके गई ना, अपने क्रिसमस का 6-7-8 महीने तक तो लेकर के जाती है, और कभी कभी उसमें सर्कमस्टेंसेस चेंज हो भी जाते हैं। तो होप तो व्यक्ति को आगे बढ़ने की रोज हिम्मत देती है, होप स्ट्रेंथ करेज भी देती है, लेकिन होप से भी बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस
3: ऑफ द सिचुएशन टुडे।
4: जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उसी समय उसके अंदर कुछ बेनिफिट देखना शुरू कर देते हैं। जब आप होप कर रहे हैं, तो आपको लगता है मेरे दिन बदलेंगे, और जब बदलेंगे तो उसमें बेनिफिट है। तो वो भी ठीक है, आपको कहीं दूरी तक वो लेकर के जाता है, आपको थोड़ी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन होप से भी कहीं ज्यादा जो पावरफुल चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि आज जो है
3: उसी को एक्सेप्ट करें,
4: ये भी परफेक्ट
3: है, पर विश्वास ना छोड़ें।
4: देखो, विश्वास, होप, ट्रस्ट, ये तो पॉजिटिविटी है ना। अगर आप होप नहीं करेंगे तो फिर आप डाउट करेंगे, तो डाउट भी तो आपकी स्ट्रेंथ को कम करता
3: ही करेगा।
4: तो ये एक थॉट मन में होना कि जैसे हम प्रेयर भी करते हैं, तो प्रेयर में भी क्या है, एक होप ही तो होती है ना। ये एक होप की द फ्लावर्स दैट यू बीन वेटिंग टू ब्लूम विल ब्लूम वन डे एंड दे डू ब्लूम वन डे, तो वो होप होना तो अच्छी बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अभिषेक बच्चन की एक फिल्म में छुपा है जिंदगी का एक गहरा लाइफ लेसन, आइए जानें वो क्या है।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: कमाल की फिल्म लगी थी अभिषेक बच्चन और सायुमी खेर की, कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी घूमर, जिसमें एक एम्प्यूटी क्रिकेट खेलने जाती है। एक्चुअली इंडियन नहीं लेकिन एक फॉरेनर क्रिकेटर की कहानी है जो एम्प्यूटी थी और जो फाइनली स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेलने तक गई थी, और बहुत कमाल की स्टोरी है। तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज आर एवरीवेयर, वी कैन जस्ट फाइंड देम एंड लुक एट इट।
3: एट द सेम टाइम कभी कभी वो क्रिटिक ही नहीं होता, फीडबैक भी होता है।
2: अच्छा,
3: आपको किसी चीज का जुनून है और किसी को दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पास उस चीज का टैलेंट ही नहीं है, तो उस चीज में भी बिल्कुल उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, वो आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपके वेल विशर है। वो देख पा रहे हैं कि शायद इस चीज के लिए जो चाहिए
2: वो नहीं है,
3: वो शायद आपके पास नहीं है। कभी कभी तो बहुत ही वो एक्सप्लिसिट चीज भी होती है, जैसे भी आप आर्मी में ही जाना चाहते हैं, वो हाइट आपके पास नहीं है या वो विजन नहीं है या जो भी आईसाइट नहीं है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना कि उसके लिए ये फैक्टर्स चाहिए, पर इसमें से एक भी फैक्टर नहीं है तो मैं नहीं जा पाया, क्योंकि वो उसके लिए प्री रिक्विजिट है, वो रिक्वायरमेंट है। ऐसे हर फील्ड के लिए कुछ चीज जरूरी होती है। अगर कोई वेल विशर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं समझता आप इसमें सफल हो पाएंगे, ये चीज आपके अंदर है ही नहीं, तो इतना भी हमें फिर वो एरोगेंस नहीं होना चाहिए। हमें लोगों का फीडबैक को कम से कम एनालाइज जरूर करना चाहिए, उस पर रिफ्लेक्ट जरूर करना चाहिए।
4: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Brides. अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
1: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehapurna amantran. Shanivar 1 August ko subha 10 baje Shivji Rudrabhishek aur sham 5 baje Virat Deep Yagya. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200. जय गुरुदेव.
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.

थॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: ड्रीम कैचर के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन क्या आप ड्रीम स्नैचर के बारे में जानते हैं? आइए इस इंटरेस्टिंग नजरिए को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपने ड्रीम कैचर देखा है?
1: नहीं।
3: तो बेसिकली कई घरों में बच्चे लगाते हैं, एक तनी होती है, उसमें क्लिप्स होते हैं, उसके अंदर फोटोग्राफ्स लगाते हैं, और बहुत बार उसको ड्रीम कैचर का नाम दिया जाता है, और आप अपनी ख्वाहिशें भी उसमें लिख के रख सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो ड्रीम कैचर बहुत घरों में होता है, और एक और बहुत कॉमन चीज है जो घरों में होता है जो लोग नहीं जानते, उसको कहते हैं ड्रीम स्नैचर। हमारे ही घरों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बोलते तुम डॉक्टर बनोगे, शक्ल देखी अपनी, तुम बनोगे इंजीनियर, तुम बनोगे पीएम, तुम बनोगे क्रिकेटर। तो इस बारे में मैं आज बात करना चाहता था कि नागेश कुकुनूर की बहुत कमाल की फिल्म आई थी इकबाल, और इकबाल में बेसिकली डेफ और म्यूट बच्चा होता है जो इंडियन टीम में क्रिकेट खेलने के सपने देखता है, और उसे घर पे ही बताया जाता है ये क्रिकेट विकेट छोड़ो, तुम भैंस पालो, तुम भैंसों को, वो फार्मर के फैमिली में होता है कि उनको तुम चारा खिलाओ, ये सभी करो, ये सपने मत देखो तुम क्रिकेट के। कई बार क्या होता है, घर के अंदर ही हमारे दोस्तों के बीच में ऐसे लोग होते हैं जो हमारा बढ़ावा करने के बजाय हमारे ही सपनों को चकनाचूर कर रहे होते हैं, और हमें बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में क्या करना चाहिए?
4: वो हमारे सपनों को स्नैच नहीं कर सकते और चकनाचूर नहीं कर सकते, डीमोटिवेट जरूर कर सकते हैं।
3: जी,
4: अभी उसमें तो देखो, एक पर्सनालिटी तो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो किसी का स्वमान बढ़ाए, किसी को एम्पावर करे, कोई अगर होपलेस है तो उसके अंदर होप दे। लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास ऐसे नहीं भी है, पर अगर आपको अपने पर विश्वास है, आपको फेथ है, तो आप फिर भी उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आप उस पर कितना फेथ रखते हैं, बाकी सब आपके आसपास उस चीज को करना चाहिए पर नहीं करते हैं, तो देन इट इज नॉट अबाउट देम, इट इज व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट दे हैव सेड टू यू।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: उन्होंने जो भी बोला,
3: उसको ईंधन बना के आप उसको आगे भी ले जा सकते हैं,
4: आप उसको एक्सेप्ट करके उससे आइडेंटिफाई करके डीमोटिवेट भी हो सकते हैं
3: और इंस्पायर भी हो सकते हैं,
4: आप उसको चैलेंज की तरह भी ले सकते हैं कि मैं इनको करके दिखाऊंगा। सो इट इज नॉट मोर अबाउट देम, इट इज मोर अबाउट यू।
3: और ये करके दिखाया भी है, यशवंत प्रभाकर जो है, यशवंत प्रभाकर सिधाए शायद उनका पूरा नाम है, नागेश कुकुनूर ने कहा कि इकबाल जो है वो उनके लाइफ पे आधारित नहीं है, लेकिन यशवंत प्रभाकर वाकई में डेफ और म्यूट थे, और उन्होंने रणजी ट्रॉफी और महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेला था इन द ईयर्स 1958 to 62 के बीच में। तो मुझे लगता है कि इकबाल काफी हद तक उनकी लाइफ पर आधारित है।
4: क्या होता है, जो आपका ड्रीम है उसके प्रति जो मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। कभी कभी हमारा मोटिवेशन, हमारा एफर्ट उतना नहीं होता, देन वी पिक अप समबडी टू ब्लेम इट ऑन देम।
3: अच्छा,
4: वैसे भी हम करते हैं। आप ही कहते थे नहीं हो सकता, आपने तो कभी मुझे बढ़ावा नहीं दिया, आपने तो कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, आपने भले किसी ने कुछ भी किया, लेकिन अगर आप करना चाहते थे और आप मेहनत करते और आप जहाँ तक भी जितनी आपकी कैपेसिटी है आप अचीव कर लेते। होता क्या है, जैसे वो कहते हैं ना, हील पीपल हील अदर्स,
3: हर्ट पीपल हर्ट अदर्स,
4: हर्ट पीपल हर्ट अदर्स, एट द सेम टाइम एथलीट्स एनकरेज अदर पीपल, बट इफ यू बिटर देन यू विल ओनली कंप्लेन एंड यू विल ब्लेम एंड यू वॉन्ट टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी
3: एल्स।
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izilin.
9: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
10: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हसल कल्चर की रेस में भागने के बजाय अपनी असली कैपेबिलिटीज को पहचानना क्यों ज्यादा जरूरी है, आइए इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं बचपन से कई चीजों में बहुत अच्छा रहा हूँ, और मुझे एक बार, मुझे याद है, मेरे जो एक्स बॉस थे, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे आज, और मैं उनको फ्रेंड और फिलोसोफर और गाइड भी मानता हूँ, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि विशाल तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बहुत सारी चीजों में 8/10 हो, बट बहुत कम ऐसी चीज है जिसपे तुम 11/10 हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी एक चीज में नहीं हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं तुमको। तो ज्यादातर मैं ना, जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे लगता था कि ये बहुत नेगेटिव चीज है कि मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन किसी भी एक चीज में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। तो जब आप बोलते हैं कि अगर कोई एक भी चीज अच्छे से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी चीजें डेवलप करने की कोशिश करो, इट गोज अगेंस्ट जो हमने सीखा है जिंदगी में कि यार कोई एक दो चीज पे मास्टरी होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें इतना फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे हो। तो ऐसे केस में क्या करें?
4: वो स्किल की बात हो रही है, ये लाइफस्टाइल की बात हो रही है। पहले तो वो दोनों बातें ही बिल्कुल अलग है। बाकी चाहे वो स्किल की बात है या लाइफस्टाइल के डिसिप्लिन की बात है, किसी भी चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए प्रैक्टिस लगती है
3: जी।
4: आप बार बार उसको करते जाएंगे तो आपकी जो एक्सपर्टीज है उसमें डेवलप होती जाएंगी। एट द सेम टाइम हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। ये अभी जो हमारा कल्चर है ना, हम सारे बच्चों को एक ही क्लास में डाल देते हैं और एक साथ उनको जज करते हैं, फिर उसमें से कोई कुछ बन जाता है, ये एक्चुअली सिस्टम बहुत एक्यूरेट तो नहीं है। क्योंकि हर एक की कैपेसिटी, मतलब हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग है। तो जब हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है तो आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए अगर आप बहुत चीजें करते हैं अच्छा है, आप किसी भी चीज में एक्सपर्टीज, इफ यू वॉन्ट टू डेवलप दैट, इट इज ओनली प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद भी आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रैक्टिस और इनकी प्रैक्टिस के बाद भी दोनों का जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। आपने जितना एफर्ट किया, आपके साथी ने जितना एफर्ट किया, और दोनों का एफर्ट सेम था तो भी हो सकता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए।
3: सही बात है।
4: और आप उस लेवल तक ना पहुंचे। आई रियली एंजॉय दिस कोट समटाइम्स कि इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देयर इज पीस इन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग।
3: क्या बात है, वेरी नाइस।
4: तो वो ज्यादा जरूरी है। बाकी
3: तो मैंने तो अपने आप को बोला कि व्हेन ऑल स्पेशलिस्ट्स आर ट्राइंग वो टू प्ले वन काइंड ऑफ सुर, जब स्पेशलिस्ट एक सुर बजाते हैं मैं पूरा ऑर्केस्ट्रा सुन सकता हूं। तो इट्स ओके टू बी ऑर्डिनरी इन अ फ्यू थिंग्स एंड नॉट बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन अ लॉट।
4: इट इज ओके एज लॉन्ग एज यू परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। अगर आप अपनी कैपेसिटी का बेस्ट दे रहे हैं, इट इज ओके एंड देयर शुड बी पीस इन दैट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अल्टीमेट मेंटल पीस पाने की शुरुआत कहां से होती है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बार मेंटल पीस के बारे में बात हो रही थी तो आपने बहुत कमाल की पांच चीजें बोली थी कि भाई एफर्मेशन सुबह पहले उठते ही करो, उसके बाद पॉजिटिव कंटेंट देखो अगर हो सके 20-30 मिनट के लिए, फिर आपने कहा कि जैसा वैसा मन की जो खा रहे हो, जो बना रहे हो खाना, वो हायर कॉन्शियसनेस में बनाओ और फिर जैसा खाओगे वैसा ही दिन जाएगा। फिर आपने कहा था कि भाई हर घंटे एक एक मिनट का अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपने थॉट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बहुत खूबसूरत होगा। और लास्ट आपने कहा था सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जो भी आपको मिला हो, जैसा दिन रहा हो, एंड फॉरगिवनेस, भाई अगर आपने को गलती की तो आप माफ़ी मांगे। तो ये मैं जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि ये पाँचों चीज़ें तो मैं करता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है, ये पांचों चीजें एक साथ नहीं करता हूँ। किसी दिन एफर्मेशन होता है, किसी दिन ग्रेटिट्यूड होता है, किसी दिन खाना अच्छा खाता हूँ। तो कोई भी भगवान तो नहीं है या कोई अभी मुनि नहीं बन पाया। जो इंसान आज रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसे कर पा रहा है लेकिन सारी चीजें नहीं कर पा रहा, उसके लिए क्या कहना है?
4: वैसे तो ये सारी चीजें करने के लिए भगवान होना जरूरी नहीं है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो लाइफस्टाइल, योगी जीवन है। ये कोई योग दो चार घंटे की बात नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। फिर भी अगर आप सारी चीजें नहीं कर पाते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। जैसे फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए कहते हैं ना, कार्डियो भी करो, मसल
3: स्ट्रेंथ
4: ट्रेनिंग भी करो,
3: अच्छा भी खाओ।
4: तो सब कुछ आप करते हो तो आप अल्टीमेट जो आपका गोल है आप उसको अचीव कर पाते हैं। पर अगर आप एक ही चीज करते हैं और बाकी नहीं कर पाते तो उस एक चीज का बेनिफिट मिलेगा। इट इज बेटर टू डू समथिंग देन नथिंग। तो आप जितना कर सकते हैं उसका बेनिफिट लेना शुरू करें, जो नहीं कर सकते इट इज ओके। पर सब कुछ करते हैं तो आप अल्टीमेट, जैसे वहां फिजिकल हेल्थ अचीव करते हैं या अल्टीमेट मेंटल हेल्थ अचीव करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Itchy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है मानसी जी का। वो लिखती हैं कि मुझे मेंटल पीस, मानसिक शांति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मिल सकती है, 5 स्टेप हो तो बताइए।
3: पहले तो मेंटल पीस एक वे ऑफ लाइफ है। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें आप कर सकते हैं जो आपकी मेंटल पीस प्रोटेक्टेड रहे।
2: अच्छा,
3: तो अगर 5 स्टेप वो कहते हैं तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द मॉर्निंग।
2: ओके।
3: उठते ही पहले हम कुछ एफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
2: एफर्मेशन,
3: क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट्स हैं जो हम कॉन्शियसली अपने मन को दे रहे हैं। तो 5 या 7 या 10 एफर्मेशन जो भी आपको पसंद है, जैसे आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम गॉड्स चाइल्ड, ऐसे 10 निकाल करके जो आपको अच्छे लगते हैं उसको हम रिपीट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमें वो चीजें करनी है जो मन को शक्तिशाली बनाएंगे, मन को पावरफुल बनाएंगे। तो सेकेंड चीज है 20 मिनट्स ऑफ पॉजिटिव कॉन्टेंट।
2: देखें सुने पढ़ें,
3: चाहे सोशल मीडिया से, चाहे किसी स्थान पर जाकर, जिसको हम सत्संग कहते हैं। तो सेकंड स्टेप है कि कुछ ना कुछ 20 मिनट्स 30 मिनट्स का पॉजिटिव कंटेंट लें। थर्ड चीज जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मन के ऊपर पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन।
2: तो जो खाएं उस पर भी ध्यान रखें।
3: जो खाना है वो सात्विक हो, भगवान की याद में बनाया जाए, उसकी याद में खाया जाए, तो आपका मन बहुत पावरफुल होता है। फोर्थ है हर घंटे आवर्ली ब्रेक लेना। जैसे हम टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक लेते हैं, ऐसे ये मन का ब्रेक है।
2: अच्छा।
3: जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन।
2: हाँ।
3: आप 1 मिनट डिस्कनेक्ट होते हैं बाहर से।
2: अच्छा।
3: डूइंग से डिस्कनेक्ट होते हैं और देखते हैं मन में क्या चल रहा है। अगर मन में कोई वेस्ट थॉट है।
2: हाँ।
3: तो आप जेंटली उसको ट्रांसफॉर्म करके वेस्ट से

0: पॉजिटिव करते हैं,
1: वो एक ही मिनट में हो जाएगा।
0: वन मिनट इज मोर देन इनफ बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। मन में चल रहा है कैसे होगा, आप अपने मन को कहते हैं बहुत अच्छा होगा। मन में चल रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपका मन कहता है ना इसके अंदर पे कुछ बेनिफिट है। सो जेंटली आप थॉट को चेंज करते हैं।
1: अफर्मेशन हुआ, उसके बाद आपने बोला पॉजिटिव कंटेंट आप देखें सुने या पढ़ें, उसके आपने कहा जैसा वैसा मन, और फिर हर घंटे एक एक मिनट का ब्रेक लेके अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करें। पांचवा
0: सोने से पहले चेक करें अगर आपसे कुछ गलत हुआ है, जिसको हम हमेशा कहते हैं अपोलोजाइज करें कि किसी के मन के अंदर भी वेस्ट नहीं चले, एंड एंड इट विद ग्रेटिट्यूड।
1: अच्छा, तो फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड इज द लास्ट।
0: फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड इज द लास्ट।
1: बहुत सही, थैंक यू सो मच।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
7: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोव एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू यूएसए. फ्रॉम ऑगस्ट 6th टू 16th एंजॉय flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: It's 9:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
4: सवाल आया है, हितेश शिंदे लिखते हैं कि मुझे हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे रोड पर चल रहा हूँ तो एक्सीडेंट के बारे में सोचता हूँ या किसी से बात करता हूँ तो लगता है कहीं झगड़ा ना हो जाए, क्या करूँ?
5: बहुत कमजोर मन के निशानी है जो हमेशा कैटास्ट्रोफी मतलब वर्स्ट केस के बारे में सोचती है। तो मन को शक्तिशाली बनाने के बहुत तरीके हैं, पर ये साइन है कि अगर आपको बिल्कुल लास्ट नेगेटिव थॉट ही आता है, देखो दो चीजें होती हैं। एक है कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है और आप अपने को उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो कोई हर्जा नहीं है। आपको आया भी कि समझो आप एक मेडिकल टेस्ट कराने गए,
4: वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए आप सोच रहे हैं,
5: किसी भी चीज के लिए आपको लगता है कोई बड़ी बीमारी नहीं निकल जाए, पर आप अपने मन को कहते हैं जो होगा आई विल डील विद इट,
4: देखा जाएगा।
5: तो द एंड रिजल्ट इज पॉजिटिव। आपको आया भी कि ऐसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो भी आपका जो एक थॉट भी आया, बट यू आर एबल टू काउंटर इट कि ऐसा नहीं होगा, होगा तो देखेंगे जो भी वर्स्ट होगा। पर जब मन कमजोर हो जाता है वो उसको काउंटर नहीं कर पाता, वो व्यर्थ को समर्थ नहीं कर पाता, वो नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, कुछ कंटेंट ही नहीं होता, कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ विजडम ही नहीं है।
4: सेनेका जो है वो एक एंशियंट फिलोसोफर थे, स्टोइक थे, तो उन्होंने बहुत कमाल की बात कही थी कि वी ऑफन सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी,
5: बट दैट इज द ट्रूथ। देखो माइंड में जो थॉट्स चलते हैं उसके तीन कारण होते हैं। एक है पास्ट, आपकी पास्ट की जो जर्नी रही है, पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है, वहां से वो थॉट्स स्टेम होते हैं।
4: सही।
5: तो पास्ट के साथ डील करना जरूरी है, उसको क्लोजर देना जरूरी है। सेकंड है डेली लेवल के जो आपके इन्फॉर्मेशन है, आपका जो कंटेंट है, जो सुनते देखते पढ़ते हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो मोस्ट डोमिनेंट है, वो आपके कंट्रोल में है।
4: सही।
5: आप अगर उसको चेंज करेंगे तो आपकी कॉन्शियस लेयर ऑफ थिंकिंग चेंज होने लग जाती है। एंड थर्ड जो ज्यादा डोमिनेंट है वो है आपके संस्कार, मतलब जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा, आपका पहला थॉट वहां से उठकर आता है।
4: सही बात।
5: अगर आपको बिलीफ है कि गुस्सा करना जरूरी है तो पहला थॉट गुस्से का आएगा ही, तो इसलिए आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट यू बिलीव इज गोइंग टू क्रिएट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ।
4: आपने बहुत अच्छी बात कही कि पास्ट और प्रेजेंट में ज्यादातर होते हैं बिलीफ सिस्टम, तो इसमें बहुत कमाल की किताब है द पावर ऑफ नाउ जो एकहार्ट टोले ने लिखी है, और वो हमेशा कहते हैं कि द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो इस पे ही रहो।
5: ओनली दिस मोमेंट इज रियल है, 100% है, पर अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम के साथ डील नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आपका यही बिलीफ सिस्टम है किसी का कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होगा, ये आपका एक बिलीफ है। अब एक्चुअली अगर पावर कैट के अंदर हो
4: तो सही बात है,
5: तो वो जिसका भी रास्ता काटे उसके साथ बुरा होना चाहिए, लेकिन पावर कैट में नहीं है, पावर आपके बिलीफ में है। अगर आपका बिलीफ है कि बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ गलत होगा, तो आप वो जैसे ही रास्ता काटेगी आपका मन एक थॉट क्रिएट करेगा,
4: आप अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हैं कि वो गलत है।
5: हाँ, इसलिए हमारा हर बिलीफ सिस्टम राइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एक नए संकल्प का जन्म होता है।
4: सही बात।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
3: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
7: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
3: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
9: Type C cable ke saath phone to charge kar loge. Khud ko kaise charge karoge? Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर अद्वैत है, उन्होंने एक सवाल भेजा है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच जेनरेशन गैप को कम करने का सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है।
3: एक्चुअली जेनरेशन गैप जैसा कुछ होता नहीं है। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन पहले के जेनरेशन को भी एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, लव चाहिए।
2: इस जेनरेशन को भी चाहिए,
3: इस जेनरेशन को चाहिए, हर जेनरेशन को चाहिए, छोटे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए। तो जिस जेनरेशन गैप की हम बात करते हैं वो मुझे समझता नहीं है, क्योंकि तरीका अलग हो सकता है। मे बी अभी की स्कूलिंग अलग है, नियम अलग है, एनवायरमेंट अलग है, तो उसको समझना वो जरूरी है।
2: मुझे इससे सुजीत सरकार की पीकू जो फिल्म आई थी उसकी याद आ गई, जहाँ पे बच्चन साहब और दीपिका पादुकोण का जो रिलेशनशिप होता है उसमें लाख डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। वो किसी भी बात पे अग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी वो दिखाते हैं कि उनके रिश्ते में प्यार बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है और एक्सेप्टेंस बहुत होता है।
3: ये होना चाहिए। ये मूवीज एक्चुअली इंस्पायर करने चाहिए कि इतने डिफरेंट होने के बाद भी एक्सेप्टेंस, पेशेंस, लव, ग्रेटिट्यूड हो तो वो रिश्ता बना रहता है। पर होता क्या है कि बहुत डिसएग्रीमेंट्स होने के बाद इन चीजों को रखना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे लोग में फिर गुस्सा होता है, नफरत होती है, बिटरनेस होती है, रिजेंटमेंट होती है, ये दिखाई देता है। दिस इज एन आइडल वर्ल्ड जहाँ मेंटली आपके मन में बहुत प्यार, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट है, बाहर आप डिसएग्री कर रहे हैं, विच इज ओके। माना एक्सेप्टेंस है बट आई डोंट अग्री विद यू, दैट इज परफेक्ट। वो बहुत ही हाई इमोशनल स्टेज है कि आप दोनों को अलग कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर। ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया। इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स। लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माय नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड ये जो दो दोस्त हैं मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीज टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

I hate it so much that I actually love it. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो मिस्टर गगन, वेरी गुड इवनिंग। बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
1: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
1: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
1: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने ATM यूज किया है।
1: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले।
1: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
1: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पे क्या मेरा नाम लिखा है?
1: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो
1: ना, आप मुझे क्या बताएं? आप बतमीजी से बात मत करिए।
2: सबको लगा दूंगा लाइन में।
1: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
1: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी। और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
1: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
14: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
13: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह, फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस्त जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की है, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है, एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा, एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन, एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स, रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। एंड द बेस्ट पार्ट, दे बोथ एक्चुअली लुक गुड टुगेदर। बट दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया, जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor, and I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया, and he's really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is love's genius that she casted both of us together. So thank you, love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam Da ne jo gana banaya hai, uska zone, uski vibe ek aur gaane se kaafi milti julti hai. But usse pehle aapko bata dun is hafte ka gana number 3 kaun sa hai.
4: Tumhe jo pathan meri jaan, mehfil hi lut jaye, de de jo zubaan meri jaan, us pe mar mit jaye.
0: Ab main kya keh raha tha ki ye jo gana hai tere pyar mein, it does sound like another song that I really love. Jo feeling, jo vibe thi, love aajkal 2 ke gaane mein, I found it here as well. And that is why mere is hafte ka pick of the week hai, Haan Main Galat, once again by Arijit Singh and Pritam Da, on the Mirchi Top 20 with me, Suren.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Izzylin, न्यू जर्सी।
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट Oak Tree Road, Izzylin, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।

0: डूड, इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था। इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट आई डोंट थिंक प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो भूल भुलैया 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो, अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन, मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग, एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन, बी इट सोनू टीटू का म्यूजिक, बी इट भूल भुलैया का म्यूजिक, और बी इट एनी अदर फिल्म ऑफ माइंड, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे, वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, तनिष्क बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Surin.
2: Number 1.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी ही डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: It's 10:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years. But our honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
12: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
4: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
15: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
17: Tera kya hoga, Kalya?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab mirchi kha.
19: Radio Mirchi. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजोकर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी
6: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोड एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू यूएसए फ्रॉम ऑगस्ट 6 टू 16th एंजॉय Flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey.

0: or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style. Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
3: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
2: Filmon mein villain ko dhote to bahut hai. पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ગુડ મોર્નિંગ, યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી. હું છું કૃતાર્થ. ભારત એક એવું દેશ છે કે જ્યાં અલગ અલગ પ્રકારના તહેવાર સેલિબ્રેટ થતા હોય. દરેકના પાછળ એક લોજિક છે, દરેકના પાછળ એક હિસ્ટ્રી છે, દરેકના પાછળ એક પર્ટિક્યુલર રીત છે એને સેલિબ્રેટ કરવાની. અને એ જ તો મોજ છે કે દરેક તહેવાર તમારા માટે કંઈક અલગ લઈને આવતું હોય છે. હવે આજનો મારો સિલી સવાલ એ છે કે એક એવો તહેવાર છે કે જે બ્રિટિશર્સની દેન છે. જો ભારત દેશમાં બ્રિટિશર્સ ના આવ્યા હોત તો આ તહેવાર આપણે ક્યારેય સેલિબ્રેટ ના કરતા હોત. બોલો, એવો કયો તહેવાર? સાચે કહું છું, જરાય મજાક નથી કરતો. બ્રિટિશર્સ ના જ કારણે ભારત દેશે ડિસાઈડ કર્યું કે આ તહેવાર આપણે સેલિબ્રેટ કરવો પડશે. ઇટ ઇઝ ધી નીડ ઓફ ધી આવર. બોલો, કયો તહેવાર છે? મારો વોટ્સઅપ નંબર છે 8799600983. રિપીટ કરી દઉં, 8799600983. આપો તમારો જવાબ. મેક્સિમમ લોકો આજે ખોટા પડવાના.
1: હેલો મિસ્ટર ગગન, વેરી ગુડ ઇવનિંગ. બેંક થી બોલ રહા હું. આપકે અકાઉન્ટ કે બારે મેં થોડી સી ડિટેલ દેની થી આપકો. આપકા અકાઉન્ટ નંબર 3371003, રાઈટ? વન સેકન્ડ સર. सर, आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं. तो
1: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
1: तो फिर किसने किया है सर? ये सर, ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर, मैं बैठा हूँ.
1: सर, आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले. किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
1: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
1: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
1: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. मुझे क्या पता कौन लेके गया सर.
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
1: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए.
2: सबको लगा दूंगा लाइन में.
1: सर, मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं. सर, ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
1: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं. आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना, कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
1: लेकिन सर, आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है. आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
10: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट

0: Saad Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi. My name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man mein villain kaun hai? Yani kyun kai baar puri film mein pura ka pura shahar suffocate hone lagta hai? Kyun Spider-Man apne aap mein ghutne lagta hai? Ye reason us villain par jaakar rukta hai. I'm not going to tell you who it is. Also, tere mein se kai log ye expect karenge ki because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned arthaat Jacob Batno, also MJ arthaat Zendaya and Peter Parker yani Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं. एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज.
0: साथ Jeeturaj, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
8: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
9: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: ગુડ મોર્નિંગ, સાંભળી રહ્યા છો મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. હોટ સોંગ હું તમને થોડી વાર પછી સંભળાવું, પણ મારા પર જે મેસેજીસના જથ્થા આવ્યા છે કે સાચો જવાબ શું છે સિલી સવાલનો, એનો જવાબ મારે પહેલો આપવો પડશે. સો ધ ક્વેશ્ચન વોઝ, જો તમે ના સાંભળ્યું હોય તો હું તમને તમારા માટે રિપીટ કરી દઉં, કે એક એવો ઇન્ડિયન ફેસ્ટિવલ છે, એક નહીં એવા તો મલ્ટિપલ ઇન્ડિયન ફેસ્ટિવલ્સ છે કે જે બ્રિટિશર્સની દેન હોય. બ્રિટિશર્સ જો ભારતમાં ના આવ્યા હોત તો આ ફેસ્ટિવલ આપણને ના મળ્યું હોત. બોલો, એવું કયું ફેસ્ટિવલ, એવા કયા ફેસ્ટિવલ? મારી સાથે ફોન લાઈન પર એક લિસનર છે, સાંભળો શું કેવું છે એમનું. હાય, ગુડ મોર્નિંગ, જય કિશનજી સાથે વાત થઈ શકે?
1: ભાઈ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ, ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ મોર્નિંગ ફોર મી. આઈ એમ ગેટિંગ અ કોલ, થેન્ક્સ અ લોટ ફોર કોલિંગ મી.
0: અરે, મને તમારી હેરસ્ટાઈલ બહુ જ ગમી.
1: હેરસ્ટાઈલ?
0: અચ્છા,
1: સારું છે, કોઈને તો ગમે છે, સારું છે,
0: બરાબર છે. હું અમદાવાદી માટે ખાલી જસ્ટિફિકેશન આપી દઉં કે જય કિશન ભાઈ ને મસ્ત મજાનો ચાંદો છે. વોટ ઇઝ ધી આન્સર ફોર ધ સિલી સવાલ?
1: આન્સર ઇઝ ધ ફેસ્ટિવલ ઓફ ગણેશ ચતુર્થી, જે આપણે કાલે મનાવવાના છીએ.
0: એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ.
1: ધ સ્ટોરી બિહાઇન્ડ ધેટ ઇઝ ડ્યુરિંગ ધેટ એરા વેન ઇન્ડિયન્સ વર રેસ્ટિંગ એન્ડ ફાઇટિંગ ફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ, ત્યારે બ્રિટિશર્સ વર નોટ અલાઉંગ ઇન્ડિયન્સ ટુ ગેધર. એ લોકો ભેગા નહોતા થવા દેતા.
0: કરેક્ટ.
1: અને ધેન આઈ એમ નોટ પ્રિટી શ્યોર, બટ ધેન લોકમાન્ય તિલક ડેવલપ ધીસ આઈડિયા ઓફ વર્શિપિંગ ગણેશજી. તો એમને આ પંડાલ્સ નો કોન્સેપ્ટ ચાલુ કર્યું, જેથી કરીને લોકો ભેગા થઈ શકે અને બિહાઇન્ડ ધ પંડાલ્સ વી કેન પ્રિપેર, વી કેન પ્લાન ફોર ધ સ્ટ્રેટેજીસ ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ બ્રિટિશર્સ.
0: બિલકુલ સાચી વાત છે, ધ આન્સર ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. પણ આના એક કરતા વધારે જવાબ હોઈ શકે છે. જેમ કે એક તો ગણેશ ચતુર્થી 1893માં આની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જે સ્ટોરી કહેવામાં આવી એ બિલકુલ સાચી છે. પણ એક હજુ એક તહેવાર છે, દેટ ઇઝ 15th ઓગસ્ટ. તમે વિચારો, જો બ્રિટિશર્સ ના આવ્યા હોત તો 15th ઓગસ્ટ આ તહેવાર, સૌથી મોટું દેશનું સેલિબ્રેશન, એ આપણને મળ્યું હોત? ના મળ્યું હોત. એટલે જ તો હું વારંવાર કહું છું કે મારા સિલી સવાલનો જે જવાબ છે એ તમારા ચેટ જીપીટી પાસે પણ નથી. રોજ સવારે હું તમને આ સવાલ પૂછતો હોઉં છું 98.3 મિર્ચી પર. ટ્યુન ઇન કરવાનું ભૂલવાનું નહીં હો. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, ઇટ્સ હોટ. ગુડ મોર્નિંગ.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं. राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है. कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ. राज जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी. अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है. मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है. तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए.
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था. दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा.
2: तो,
3: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ. पूरी नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा. आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है. नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ. तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
2: कॉपी मुझे भी भेजना.
3: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेज.
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा. आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए.
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए, ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को. नहीं, ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें. राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा. मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं. बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
11: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
12: Inefficient,
13: very complex,
14: clumsy और
15: confusion ही confusion.
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
19: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
18: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
20: Ise apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है.
18: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
7: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
6: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668. Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
13: हेलो, दिस इज उदित फ्रॉम आरके ज्वेल्स. ऑन दिस प्राउड ओकेजन ऑफ इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे, आई विश ऑल द वंडरफुल लिसनर्स ऑफ रेडियो मिर्ची अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. मे आर ट्राई कलर always fly high, filling our hearts with pride, unity, and hope for a brighter tomorrow. From all of us at RK Jewels, wishing you and your loved ones a very happy Independence Day.

0: se permite.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, हूँ जो कृतार्थ। आज नो सिली सवाल जरा गेम हतो के गई काले गणपति बापा नी दान पेटी मा भारत देश मा जेटली पण करंसी नी नोट्स अवेलेबल छे एनी एक एक नोट में नाखी, तो बोलो टोटल मैं कितना रुपया नु दान करियो छे? मारी साथे हमणा फोन लाइन पर एक लिसनर छे, सांभळो शुं केवुं छे एमनु।
7: गुड मॉर्निंग कृतार्थ अंकल।
6: अंकल? हूँ अंकल? तारी उमर शुं छे?
7: बस 16
6: छे। तो हूँ शू लागे छे हूँ केटला वर्ष नो छु?
7: 25-26
6: इयर्स नो हूँ तो अंकल कहेवाय एवुं?
7: हा,
6: एटले जेनजी माटे बधा अंकल जेवुं। क्या क्या भणो छे दोस्तु?
7: પોલિટેકનિક વાળો છોકરો, થોડાક દિવસ પહેલા તમને યાદ હોય તો કોલ કર્યો તો।
6: અચ્છા, ત્યારે તો તું અંકલ નતો બોલતો? ઓકે બોલ, શું છે આજનો જવાબ?
7: 6-8-8-2-6-8-8
6: કેવી રીતે?
7: 1000 અગર આપણે લીગલ ટેન્ડર ગણીએ તો 1 ની નોટ, 2 ની નોટ, 5 ની નોટ, 10 ની નોટ, 20, પછી 50, 200 અને 500 અને 2000 ગણીએ તો 2688 થાય।
6: બરાબર, જેટલી નોટો તે ગણી છે એટલી બરાબર છે, પણ તારું કેલ્ક્યુલેશન 100% ખોટું છે। જરાક સરખી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો, મને જવાબ આપો। મારો વોટ્સએપ નંબર છે 8799600983, રિપીટ કરી દઉં, 8799600983। ગુડ મોર્નિંગ।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: Celebrate Azadi with Eden Robe and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
13: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: Tera kya hoga, Kalia?
0: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग First time home buyers also offering zero closing cost refinance option. For more information call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
8: Listener mein back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey. And 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Milchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana.
2: La bala.
1: Burga, burga. La virba, la burga.
2: Milchi, burga.
3: हेलो,
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे
4: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
4: नहीं,
3: है?
4: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं। उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
3: पूरी
4: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
4: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
3: ये कॉपी मुझे भी भेजना
4: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेज।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं।
3: भाई अच्छा चेहरा होना भी बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो गई है।
4: बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
10: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
9: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668. Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Celebrate Azadi with Eden Robe and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
8: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
7: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
8: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: तेरी मम्मी की जय।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची का
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Rámbala! ¡Murga, murga! ¡La viva la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¡Hello!
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए.
2: सबको लगा दूंगा लाइन में.
3: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
11: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1,000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. The Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep Cow to Jano.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
14: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
15: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
14: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
17: गोली गोज डाउन द ग्राउंड, गोली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है.
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road Islington
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे
13: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब

0: गाने का नाम साड़ी सुन, सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ऑन गाना नंबर 10। ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10 only show on Mirchi, which is all about the hottest pop songs of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Abhi kabhi jao Instagram pe. फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @ RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कई बार ऐसा होता है ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाएं, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस वो कहीं से भी आप सुने या एकदम पूरा गाना याद आ जाता है। सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है। हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलोडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं। एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह। चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करें ना करें, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी। माय फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट। सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोज कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे। नाउ @ RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी @ RJ कनिका पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है। @ RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है। बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौड़। गाने का नाम है बैंगल्स। 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 9।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे, अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. यू नो, हर पार्टी में एक टाइम आता है जब सिर्फ पंजाबी गाने चल रहे होते हैं. कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में हमारा एसोसिएशन विद पंजाबी म्यूजिक ही सिर्फ ये था. एंड जब मैं कहती हूँ ना हमारा, आई मीन वो लोग जिन्हें पंजाबी बोलनी या समझनी नहीं आती, और जितनी भी आती है वो सिर्फ गानों से आती है, अपने फेवरेट आर्टिस्ट और सिंगर से आती है. लेकिन पिछले 4-5 साल में आई हैव सीन अ मैसिव ट्रांजिशन. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माई मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती. बिकॉज आर्टिस्ट लाइक AP टिल्लो, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा बठिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड, काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है. पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुंवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी, मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचे. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Crazy For You by Coer this week on our Gaana Spotlight at RJ Connect on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट आरजे कनेक्ट पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीस और कारण, हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. नंबर 5.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
7: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
6: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
11: अब मिर्ची खा।
13: Radio Mirchi, it's hot.
4: It's 5:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Ghana Indie Top 10.
14: Kanika ke saath on Mirchi.
15: Number 3.

0: पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मीटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मीटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
1: पर, this is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है RJ Kanika। Instagram पर जाओ, connect करो, मेरा handle is @RJKanika। कोई बातें बतानी है, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके hit me up। Trust me, it really matters a lot। कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेम्बर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माय डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, बट इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे, आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी, मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड। अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है, इज अ बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
3: मैं बिल्कुल इस फीलिंग को समझता हूँ। जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग, एंड यू शुड हैव, यू आर बोर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोले मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और ए आर रहमान, तब ए आर रहमान भी नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song, अभी भी मुझे goosebumps आते हैं इस गाने को सुन के. I think this will go down as one of those classics जो मैं आज से 10 साल बाद भी play करूंगी और हमें ऐसा ही feel होगा. Arman Malik की आवाज, Arman Malik की composition, that was मैं रहूं या ना रहूं. At RJ Cutting on Instagram पर आओ and tell me about your story. कभी कोई ऐसा compliment मिला हो जो आज भी बहुत special feel कराता है, मुझे आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का गाना, इट्स अ कुक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap, show ka naam hai Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, jaldi jaldi follow karo, handle is @RJKanika. Follow karna to bilkul free hai, koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I might feature your favorite songs on the show. It's time for what we call
0: Kanika's Kasat Classic.
1: कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं और ये हमारे शो का सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है. इतने सारे डीएम्स, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ. इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम. साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के. ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक. बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दो सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस अब हम कहानियों में सुनते हैं. जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बंदा, वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाहकर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए. आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया. एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था. तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम. दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे कनेका. दिस इज गाना इंडी टॉप 10. एंजॉय.

0: What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaane Ganam Di Wana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s 2000s ki yehi wale gaane, you know, it makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown. It's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग
1: इज में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट

0: लगे।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली goes down the ground.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 6 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेन सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूँ विद गाना नंबर 20, विच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
5: नंबर 20।

एमएस के बाद एक बिल्कुल नई एंट्री। टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: Slipping down by one position, Arijit Singh ka gaya Tujhko from Cocktail 2. Lekin apni memories ki hard drive se ek aisa chapter dhoond ke nikal raha hoon that is gonna take you back to your friends and time. इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा खोआ जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंडट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना
2: बना
1: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
2: मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहा हूँ। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
4: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवास पुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है
5: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो?
3: क्या यार?
5: अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy or
12: confusion ही confusion.
7: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
14: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
15: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Celebrate Azadi with Eden Road and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzelin, New Jersey. Conditions apply.
19: Listener MA, back to back gana sunega.
3: Back to back gana sunega.
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
4: Number 17.

0: किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है अपनी ही रचना, अपनी ही क्रिएशन को किसी और के हाथों बदलते हुए देखना। शाश्वत सचदेव के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज जाइए सजना इज एन ओरिजिनल फ्रॉम धुरंधर। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने आंखों से तूने क्या कह दिया नाम के इस गाने का नया वर्जन आपको सुनाया भी था और अपनी बात भी रखी थी। लेकिन फिर उस गाने के ओरिजिनल कंपोजर जतिन ललित के जतिन ने भी इस रीमिक्स को लेकर अपनी राय रखी। मुझे लगा इससे बेहतर जवाब शायद मैं नहीं दे सकता था।
1: हमारी एक फिल्म थी गुलाम, 1998 की फिल्म थी ये। इसी पिक्चर का एक गाना है, उसका मैंने रीमिक्स सुना और उसमें क्या किया है उन्होंने, जो बीट डाली है वो डांसिंग बीट डाल दी। अब डांसिंग बीट से हुआ क्या है, एज ए कम्पोजर अखरता है, क्योंकि ये डांसिंग का गाना नहीं है, ये मॉडरेट गाना है, मॉडरेट रिदम है इसकी और मॉडरेट मूवमेंट है। और जो आमिर खान और रानी मुखर्जी का जो शूट किया है वो मिड शॉट है और क्लोजअप है और बहुत अच्छा लगता है गाने में प्योरिटी। अब इसने जो रिमिक्स किया है उसमें वो डांस डाला है उन्होंने, लेकिन एक तस्वीर जो बनी हुई है जिसके रंग सब जगह सही सही है, उसमें और दूसरे रंग डालना तो वो तस्वीर को बिगाड़ने की बात ही हो जाती है, वो उससे खूबसूरत नहीं हो सकती
0: यार। बस इसलिए हर गाना रीमिक्स नहीं मांगता, कुछ गाने सिर्फ दोबारा सुने जाने के लिए बने होते हैं। खैर, नंबर 16 पर चटनी है जो अपनी जगह बनाए हुए है। नाम चाहे कितना भी अतरंगी क्यों ना हो, आखिरी फैसला हमेशा वक्त ही करता है। पर जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, गाना मॉडरेट था जैसे जतिन सर ने बताया, इट वॉज अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इस बार इसको डांस नंबर बना दिया है। नंबर 15 पर आंखों से तूने ये क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है। नंबर 15

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
6: ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

पता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी? उसे लगा हमने रोमांस से प्यार करना छोड़ दिया है। शायद इसलिए स्क्रीन धीरे धीरे एक्सप्लोजन से भर गया, यूनिवर्स बनने लगे, इवेंट फिल्म्स बनने लगी और प्यार, इश्क, मोहब्बत बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने OTT पे एक शो देखा जिसका नाम था मुसाफिर।

कैफे, विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो, महिमा मकवाना, और उसे देखते हुए एक बात समझ आई, यार प्रॉब्लम रोमांस की कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम अच्छे रोमांस की थी। क्योंकि जब कोई कहानी दिल से लिखी जाती है ना, हम आज भी उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ टूटते हैं, और उसके साथ तो पारा प्यार कर बैठते हैं। मुसाफिर कैफे कोई लाउड शो नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घुस जाता है, वैसे ही जैसे कभी तमाशा घुसी थी, वैसे ही जैसे सैयारा ने एक इंपैक्ट क्रिएट किया था, और वैसे ही जैसे कल होना हो या शाहरुख खान की कोई भी लव स्टोरी हमारे जहन दिलो दिमाग में घुस जाती है। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में रोमांस कम हो गया है, तो शायद आपको सिर्फ मीडियम बदलना पड़ेगा, एहसास नहीं। और जब बॉलीवुड की बात निकली है तो उसका वो दूसरा चेहरा भी देख लेते हैं, जहां पे है मस्ती, हंगामा एंड फुल ऑन मैडनेस। नंबर 12 पे है साड़ी, धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: एट 6:30 PM मिर्ची टाइम चेक आरके जूल्स गेट अमेजिंग डील्स ऑन एक्सक्विजिट कलेक्शन ऑन वाइड रेंज ऑफ फ्लॉलेस एंड स्टनिंग ज्वेलरी कलेक्शन आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
2: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Suren ke saath only on Mirchi. It's hot.
3: Number 11.
4: मेरे

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद
1: वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका दर्द, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
2: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी एक ऐसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते। वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
1: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक। स्पेशल।

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची इट्स हॉट
1: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट
2: हाय My name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी
10: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इसलिन
12: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार

0: कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

धुरंधर ने इस साल बॉक्स ऑफिस नहीं लाया, एक बहुत बड़ा मिथ भी तोड़ दिया कि ऑडियंस को बस वही पुरानी फॉर्मूला वाली फिल्में चाहिए। जी नहीं, ऑडियंस को बड़ी फिल्में चाहिए, बड़े आइडियाज चाहिए, बड़ी कहानियां चाहिए, बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए। एंड पिछले हफ्ते इंडिया ने ये बात फिर से प्रूव कर दी। एक तरफ है स्पाइडरमैन एंड दूसरी तरफ है क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी। दोनों के लिए थिएटर्स भर गए। लोग लैंग्वेज देखकर नहीं गए, स्केल देखकर गए, एक्सपीरियंस देखकर गए। अब जरा अपनी तरफ देखिए, हम कितनी बार वही घिसी पिटी एक्शन फिल्में बनाते हैं, वही प्रेडिक्टेबल कॉमेडी बनाते हैं, वही रूटीन फैमिली ड्रामा बनाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि ऑडियंस आखिर थिएटर्स आ क्यों नहीं रही। सच तो ये है यार कि ऑडियंस की चॉइस बदल चुकी है, लेकिन बॉलीवुड का कंफर्ट जोन अब तक नहीं बदला है। शायद बॉलीवुड इस बात से वाकिफ भी नहीं है। और जब भी कोई फिल्म मेकर सच में कुछ बड़ा सोचता है ना, चाहे वो धुरंधर हो या कोई भी और फिल्म हो, ऑडियंस उसे कंधों पर उठा लेती है। शायद वक्त आ गया है कि बॉलीवुड छोटी सोच की फिल्में बनाना बंद कर दे, क्योंकि ऑडियंस अब बहुत बड़ी हो चुकी है। ऑडियंस ने इस महीने दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। अगर सपना बड़ा होगा, हम थिएटर जरूर आएंगे, और अगर कहानी वही पुरानी सोच वाली हुई तो स्टार कास्ट भी हमें सीट से उठने पर मजबूर नहीं कर पाएगी। कॉकटेल सिर्फ 150 करोड़, इन स्पाइट ऑफ द कास्ट इट हैड। इनफ सेड। नंबर 9।

0: चार साल तक इंतजार किया कि when will Yash return to the screen, और एक ही साल में he's got two films coming out back to back. तबाही from Toxic, Not Safe for Kids, and then दूसरी फिल्म है रामायण, जिसका ट्रेलर आए हुए अब कुछ वक्त हो गया है. और ये शायद पहली बार हुआ है कि मैंने किसी ट्रेलर पर तुरंत ओपिनियन देने से खुद को रोक लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक और फिल्म का ट्रेलर नहीं था, ये रामायण है. और रामायण को हम रिव्यू नहीं करते, उसके सामने हमारी अपनी यादें खड़ी हो जाती हैं, बचपन की, दूरदर्शन की, रामानंद सागर जी के उस सीरीज की. हर जेनरेशन की अपनी रामायण है. इसलिए पिछले हफ्ते मैंने ट्रेलर को दोबारा देखा और फिर दोबारा देखा. सच कहूं, मेरी सबसे बड़ी चिंता है इसके VFX. जी हाँ, मेकर्स तो ये कह रहे हैं कि फाइनल CGI अभी और ज्यादा इवॉल्व होना है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि वो वैसे ही हो, क्योंकि जब आप 4,000 करोड़ रुपए की दुनिया बना रहे होते हैं तो ऑडियंस सिर्फ विजुअल्स नहीं देखती, वो उस दुनिया पर यकीन करना चाहती है. लेकिन एक जगह जहाँ ट्रेलर ने मुझे पूरी तरह जीत दिया, एंड दैट इज यश. देखो, रावण को अगर हराना है तो पहले उसे हराना नामुमकिन लगना चाहिए, और जब यश स्क्रीन पर आते हैं वही एहसास देते हैं. नाउ, मेरा सबसे बड़ा इंतजार ट्रेलर का नहीं था, म्यूजिक का था, क्योंकि रामायण का असली सफर हमारी यादों तक गाने ही पहुंचाएंगे. फिलहाल नंबर 6 पर इस हफ्ते है शरारत, जो है फ्रॉम धुरंधर, अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है. लेकिन रीवाइंड में चलते हैं रामायण के डायरेक्टर की तरफ, जिन्होंने दंगल बनाकर हमें यकीन दिलाया था कि वो कहानियां दिल तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. हसब दुआ है कि वही जादू नितेश तिवारी रामायण में भी दिखाएंगे. दंगल, प्रीतम दा का म्यूजिक, दलेर पाजी की दलेर आवाज. माय पिक ऑफ द वीक.
1: पिक ऑफ द वीक.
2: माय

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: हेलो
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी. नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है. कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी. मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी. अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है. मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है. तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए.
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं नहीं, वही मैं, जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं. उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था. दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा.
2: तो
3: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ.
2: पूरी
3: नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा. आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है.
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ. तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राजी. एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा. आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज.
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा. अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए.
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए, ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को. नहीं, ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें. राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा. मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं. बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया. आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरु.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
9: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
11: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
12: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है।
18: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
19: के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट नंबर 5।

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है. एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है. इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते. नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है. और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है. तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया.
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बजेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं. जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप, मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है. तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है. मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे. मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूं? तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं.
0: यार बस यही फर्क है. और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं. क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया. फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है. तो दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के. इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन.
2: नंबर 4.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
4: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
6: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोड एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू USA। फ्रॉम ऑगस्ट 6th टू 16th, एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, वुमेन, किड्स एंड फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस। विजिट आवर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी, और shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: Listener mein back to back gana sunega.
15: Back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.5.

0: Oh my god, Chinnari Chinnari after so many weeks has finally climbed to number 2, even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BB number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen. Uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था.
1: कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक म्यूजिक सुनते रहिए, खुश रहिए, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ only on Mirchi, it's hot.
2: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
3: Radio Mirchi, it's hot. 92.7 FM.
4: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: मैं करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड, इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट. इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने Spider-Man के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन Instagram @mirchijiturraj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है, ओके आई टोल्ड यू, Instagram @mirchijiturraj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi mehfil mein aapka taashi karta hai, aapka istiqbal aur mera birthday aane wala hai. Aur ye baat mere jitne log ko pata hai aas paas, us bare mein wo bahut khush hain, mujhe yaad dilate rehte hain ki 10 din remaining, 9 days remaining, aisa karke. मुझे इस बात का कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है. मुझे ना ऐसा बर्थडे वाले दिन पे कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बचपन से. आई फील वेरी एंग्शियस जब भी मेरा बर्थडे आ रहा होता है ना, कि उस दिन कुछ अलग सा होगा, कुछ अलग